0: सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणे। आओ थोड़ा अपनी असलियत वाल नजर मारिए। मैं एक सवाल उठाना हां, असी सारे जितने इत्थे क्रिस्ती बैठे हां, कि साड़ी जिंदगी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यह है कि असी अपने आपे की खोज करनी है? इसका अपने अंदरों उत्तर लभो, अपने अंदर रिफ्लैक्ट करो, अपने अंदर ध्यान नाल इस गल का जवाब लभो कि तुसी जिंदगी दे विच, असी जिंदगी दे विच कि यही मुख काम जो है उसनू अपने मुख रखिया होया है अपने आप नू पहचानन दा, जां ये कोई इशू ही नहीं है साड़ी लाइफ का, जां ये कोई साड़े वास्ते खास कोई समस्या नहीं है, जां ये कोई साड़े वास्ते बहुत अहम चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अपने अपने अंदरों जवाब लभण की साथ संगत कोशिश करो। गुरु बाबा जी की हजूरी दे विच असीं बैठे ईमानदारी दे नाल कि असीं अपने आप की खोज करन दे वास्ते भी कोई टाइम निकालदे हां जां नहीं निकालदे, जां कोई साडा ध्यान है इस पासे जां नहीं है, साडी सोच है इस पासे जां नहीं है, कि असीं अपने आपे की खोज करन दे विच लगे हुए हां जां दिनों दिन अपने आपे नूं गवाई ही जा रहे हैं, खोई ही जा रहे हैं। गुरु बाबा जी ने तो स्पष्ट आख दिता है कि सो गिरही ओही ग्रिस्ती असल ग्रिस्ती है, ओही सन्यासी असल उदासी है जिसकी जिंदगी का आदेश एक ही है कि उसने अपने आप नू लभना है कि मैं कौन, मेरी असलियत की है, अपने मूल नू पछानना है। महाराज जी ने साडे ते सवाल भी किया है, कहिंदे हन सुनो रे तू कौन, कहां ते आयो, कहिंदे भी तू कौन है, कितों आया है, तेन इस चीज की खबर है? बस जिस दिन तू ये लभ लेगा कि तू कौन है, जिस दिन तू ये पहचान जाएगा कि तू कौन है, उस दिन कहते हैं अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया, अपने आपे नू पछानना ही नाम की प्राप्ति है। कोई पूछे नाम की प्राप्ति की चीज है, नाम की है, अपने आपे नू पहचानना ही नाम की प्राप्ति है, और अपने आपे नू पहचानन तो बाद के मैं आ हां, फिर मैं अपने आप नू असल तौर ते प्यार करांगा कि मैं आ हां। जदों किसी नू ये पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हां, उस दिन उसनू अपनी असली हस्ती का पता लगेगा कि वो कितनी महान है, वो प्यार करन दे योग है, और फिर उसनू ये भी नजर आएगा कि ये जो दूसरे हन ये कौन हन, मेरे पे इना अंतर की है। उत्थे जाके ड्युअलिटी द्वैष मेर ते सब खत्म होएगी जदों अपने आपे दी पहचान हो जाएगी। सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणिया। सो ग्रिस्तियां नू इस भुलेखे च इस टपले च इस गलत फहमी च नहीं रहना चाहिदा कि असी इना दुनियावी रुझेवियां विच इतने रुझ जाइए अते इतने सुस्त हो जाइए, इतने आरामदेह हो जाइए, इतने लेजी हो जाइए कि एक सन्यासी साधु वर्गा जीवन ग्रिस्ती का भी होना चाहिदा है, ते ओ ना हो आपनु नहीं बुझिया कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो ग्रिस्ती है, चाहे को काजी है, चाहे को मुल्ला है, चाहे को जंगम है, जोगी है, पगवे पेघवाड़ा है, कोई भी चाहे है, जितनी देर तक अपने आप की पहचान नहीं कर लेंदा अकाल पुरख की दरगाह दे विच कहिंदे ओ बख्शिया नहीं जाएगा। कहिंदे हन काजी मुल्ला होवे शेख, कोई काजी होवे चाहे कोई मुल्ला होवे, साडे वल लगा लो कोई भाई होवे, ग्रंथी होवे, कीर्तनिया होवे, کوئی شیخ ہوئے.
1: جوگی جنگ میں پگ میں پیک,
0: کوئی جوگی ہوئے, کوئی جین مت دا ہوئے, کوئی پگ میں پیک والا ہوئے. کہندے ہن
1: کو گرہی کرما کی سند,
0: چاہے کوئی گرستی ہوئے گرہی ہوئے جڑا سارے کرم کرم تے نبھاندا ہوئے, کدے پاٹھ کرا لیا, کدے لنگر کرا لیا, کدے تیرتھاں تے جائے درشن دیدارے کر آئے, اتے باقی دنیاوی ذمہ واریاں بھی ساریاں نبھاندا ہوئے, لوکاچاری بھی پوری کردا ہوئے, کو گرہی کرما کی سند, سارے کرما نوں پوری طرح ملاندا ہوئے کردا ہوئے. پر کہندے ہن

राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। इफ यू आर द माउंटेन लॉर्ड देन आई एम द पीकॉक। जो तुम चांद तो हम पहे हैं चकोरा। इफ यू आर द मून देन आई एम द पार्ट्रिज इन लव विद इट। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे हैं। तुम स्यों तोर कवन स्यों जोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन ज्वाइन। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती। इफ यू आर द लैम्प देन आई एम द विक। इफ यू आर द सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज देन आई एम द पिलग्रिम। साची प्रीत हम तुम से जोरी। तुम से अवर संग तोरी। आई एम जॉइंड इन ट्रू लव विद यू ओ लॉर्ड। आई एम जॉइंड विद यू And I have broken with all others. Jeh jeh jaun tahan teri seva. Tum so thakur aur na deva. Wherever I go, there I serve you. There is no other Lord Master than you, O Divine Lord. Tumre pajan kate jam phansa. Pagat het gaave ravidasa. Meditating, vibrating upon you. The noose of death is cut away. To attain devotional worship, Ravidas sings to you, O Master. Madhve, tum na toro, to hum nahi tore. Tum syo tor, kavan syo jore. Raag sorat, tal, choti tintal, 16 beats.

आप आए हैं दुष्ट दमन तू संसार ते जा। कहंदे ने मेरा मन नहीं करदा तेरे चरणा तो, पर हुकुम भी मनना है। पर बार बार कह रहे ने मेरा दिल नहीं करदा किसी होर दी ड्यूटी लाओ। प्यार नाल सत्कार नाल किसी जोर जबरदस्ती नाल नहीं, थापड़े दे दे के जिवें प्यो पुत्र नूं समझांदे बच्चे नूं आखदे ते मेरे पातशाह जी दे की वाक हन, आप फरमांदे न आओ चलिए श्री हेमकुंड साहब जिथे मेरे कलगीधर पातशाह जी परमात्मा निरंकार नूं जवाब दे रहे ते की आखदे न।

आओ गुरु के सिखो। ओ मेरे दुष्ट दमन पिता साहिब कलगीधर पातशाह निरंकार दे चरणा नाल जुड़े हन, आपां भी थोड़ा समा मेरे पातशाह दे चरणा नाल जुड़ के इस शब्द नूं श्रवण कीजिए। मैनूं याद है कैलगरी विखे ये शब्द दास पढ़ रहा सी, आ गोरे सिख जिन्हां ते पातशाह दी बहुत मेहर है, बहुत कृपा है, आ नवे सिख सज रहे भावे ओनू समझ नहीं सी आ रही, सुन रहा सी बीबी सी, उसने उठ के कहा भावे मैनू अर्थ समझ विच नहीं आए पर मेरा मन कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे चरणा नाल जुड़ गया। उन्हें आख्या मैं नितनेम नाल इस नूं टेप ते सुन दी हां और बड़ा ही मैं जिवें एक शब्द सुन के हेमकुंड साहिब ते पहुंच जानी हां। तो गुरु की साध संगत आओ आपां वी उसे ध्यान नाल

एक दिन काले अपने प्रीतम के हों बिरहों जाले इस दी बंदश पैरवी ते शिवरंजनी दे मिलाप दो रागां दे मिलाप दे विच है आप प्यार ना सरवण।

सब नो परते फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड दुखे कब हूं मिट है नीरे पछतायो सत विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ अनुगुरु नानक पातशाह अनुगुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है ने कोई संकट भी आएगा ते 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार ना सारे आखो अनुगुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतों के सेवादार पातशाह हुक्म करो हलो कह लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बना अब गुरु की संगता की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संगतों वास्ते आप चक्की पी आटा तैयार किया फिर साहबान ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसी सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे तो संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी दे अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुक्म मारी तुर लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी है तो तुम भी ठंडे जल की गागर कर जिथे संगत को भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर के उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी ना लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाते अज पंजवां गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो धन गुरु रात दस गुरु को यह जाना है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता पर तक लो प्यारी सात सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों में तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात दस गंगा जी सुना ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगतों प्यार किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बरसित की थी माता गंगा के कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है तेरी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा

सास कितनी प्यार वाली की प्यासी गुरु ने दर्शना दी नाथ पी मिली आप भी मैं दिन की पड़ी की पता ये अज ना दिया लोचा पूरी हो जाए अगर कोई बक्ति कोई वही गल तो प्यार ना पहले सिर पिछले

बाबा ने अपने प्यार दी मिसाल कितनी सुंदर है मेरे दाता जी, दिल करे चादर की जाए कृपा न उतरे हाथ न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो औको लीजिए गुरु कुमारी गुरु दर्शन मैं गंगा जी कहता एडे प्यार वाले तेरे सिख हां गंगा जी आओ चल के छेती दर्शन अगे गुरु की संगत कीर्तन करके ते हुण आराम कर रही साहब जी पहुंचे जथेदार बेनती की जथेदार जी धन गुरु नानक दिया संगत वास्ते कला प्रशादी देंगे जथेदार जी उठ के बैठ गए सारी संगत नू सावधान किया प्यारी सार संगत उठो कोई गुरसिख आया है गुरु ने उन्हें मन नू प्रेरिया है लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया कला प्रसादी दे जा रही है उठो पहले अरदास करो सिख नू जो भी गुरु वालों दात मिलती है ना पहला अरदास करो ये अरदास करे तो वो गुरु की बख्शिश बन जाती क्योंकि गुरु की मोहर लग जाती है कार्य प्रसादा तैयार हो अरदास करो गुरु का लंगर बन जाए क्योंकि अरदास भी हो कोई कार्य है गुरु की कोई वस्तु मिली चंगी कार मिली है पहला गुरु की अच्छा तेरी चंगा धन मिले जय प्रसाद मसा सुख मंदिर किसे प्याए सारी संगत सावधान जथेदार ने गल च पला पा के अरदास की ऐ धन गुरु नानक पातशाह तेरा प्रेमी सिकड़ा प्रसाद की देख लेके आया है सिख नू नाम दान बख्शी सिख नू सिखी दान बख्शी अजू कह लगे गंगा जी सेवा का फल मिल गया जी अज असी प्रेमी सिख बन गए गंगा का सेवा का फल अरदास करो जी साहबा ने अपने हथ सारी संगत को कला प्रसाद के गुरु सिखाए गंगा जी हम जल भी चला साहबा के सोहने हथां जिन्हें जिन्हें प्रसाद लिया उन्हें ही जपया श्री वाह गल चुकाया जूठे भांडे कौन मांज रहा है माता गंगा जी वो हथ पवित्र जो गुरु घर की सेवा जो गुरु घर की सेवा तू मांजे हैं भाई साहब जी लिखते फिर सेवा बिन हथ पैर होर मेहबल कर दी सारे जल सकिया भुख भी दूर से प्यास भी दूर हूं संगत आराम कर रही है धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी लैके पक्का सारी संगत को पक्का कर पक्का कर दिया प्यार क्या कि

दरार में रख दी। कह लगे रागी सिंह जी की पड़े है, अच्छा पखा फेरी पानी ढोना जो देवे सुट। बाबा जी कह लगे कदे पखा फेरे आखो स्त्री कदे सात संगत वास्ते पानी ढोए एडा वड्डा सवाल थी एडा वड्डा क्वेश्चन हार के बेनती की थी। बाबा जी असी तो पंथियां पढ़वाए। बाबा जी कह लगे फिर तुझे सानू उपदेश नहीं कर सकते, ये अमल नहीं किया पाएगी सानू उपदेश नहीं कर। बाजिया तो खा लाहौर तो संग साढ़े प्यार वाले कई आए मनु बड़ा बड़ी हैरानी हुई। संगत में बाबा जी ने ताड़ना कर दी। बाहर निकले तो सार संपूर्ण सिंगोरी होंगे संगत जी से बड़े गुरु बड़ा मिठा जीवन। बाहर आए हके कह लगे काबरो ना क्योंकि महापुरुषा की ताड़ना ही ताड़ना काबरना नहीं चाहिए। जे मास्टर टीचर किसी वेले स्टूडेंट बच्चे ताड़ना है उन्हें कोई वैधरूपता नहीं होंगी निराश बच्चे के भले वास्ते। माता पिता जे किसी वे बच्चे कुछ कह देते हैं तो उन्हें माता पिता का स्वार्थ नहीं होंगे। माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा हमेशा चढ़ी हकल च रहे कामयाब हो रहे। जे किसी वे मां पुत कह देती है पुत मर जा। बाबा जी कहते सर पुत्र बुराइयां कह अंदरों तो आशीर्वाद देती है कि मेरा पुत्र युगो युग तो महापुरुषों की ताड़ने। बाबा नरसिंह जी महाराज ताड़ना बड़ी प्यार भी करते सर पर ताड़। बाबा जी कहते सर सारे महापुरुष चंगे रहे पर ताड़ना का पदार्थ तो शायद ही कदम पर ताड़ना भी ताड़ना तो की करिए। पूरे सिर कह लगे थोड़ा जि उपराला करो सोचा भी पखे की तो इतने लोड़ नहीं बड़ी ठंड सी ख्याल आया फिर पानी धोई तो पानी का जिस ने ख्याल बनिया तो ना ही सोचा उतों तकरीबन अद्धा मील लेखा चश्मा सी जितों पानी उपर यही सोचा चलो मन महापुरुषों की प्रसन्नता ने। तो संत महाराज संत सुजान सिंह जी सेव के उस्ताद सन भी साल की संगत उन्होंने बख्शिश कीर्तन थोड़े चो कई उन्होंने सुनिया होगा तो जो उन्होंने कीर्तन आ जाता सी तो उठन की हिम्मत ही नहीं सी बख्शी पर बड़े गुणी सन। सिर्फ संत ही नहीं सन नाले विद्वान भी सन क्लासिकल भी बड़े माहिर बड़े बड़े मुसलमान उन्होंने मनते सन गवी। तो उन्होंने पिता जी भाई साहब भाई ज्ञान सिंह जी जोड़ी वाला सिंह ते दास चाहे असी की किया सिर के उत्ते टीम चुक लै जे सतारा सतारा सेर के क्रस्तर हो चलो पानी लिया तुर पै चश्मे से पहुंचे पानी भर लिया चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। चढ़ाई बड़ी जबरदस्ती शरीर पसीना पसीना पानी कपड़िया से डूबता जाए बड़ा सा चले आखिरकार जिस वेले उपर पहुंचे तो अगे बाबा जी नितनेम करके 10 बजे बाहर निकलते थे हाथ में सौटी चिट्टे गुरु वर्गे वस्त्र पाए हुए चिट्टा दारा मस्त से कोई दूर सी रबी कह दूर वेख्या इशारा किया कोल गए जिस वेले तीन रखे पानी में नमस्कार की थी। बाबा जी मुस्कुरा पाए कह लगे थक गए हो नहीं पाए कह लगे कोई नहीं चाहे एक टी भी पानी का लिया जो पंक्ति पढ़ जोगे तो मर गए ना कारण है। बाबा जी बचन करते सर माड़ी कह मात्र नहीं कमाई करके दुनिया में देख लो थोड़ा सर कहकर सत्संग सेव सिख पूजन सब आवे सब गावे हर उत्तम बाणी अदो कहना गावे सुनिया हर तिर का थाए पावे जिन सतगुर की आ गया सत सत के लिखे कमाई कर अपना तरक्ति कर जीवन बना के फिर कीर्तन कई बार यह भी कह दें सर भी थोड़े भी कंजन की फर्क कई बार कह बाबा जी ने क्योंकि बख्शिश कर दे सर कहना थोड़े पिता की फर्क है साल थोड़े को भी अनुना को भी

फूटी किसी राह नहीं किया, सास नहीं उठो, तैयारी करो, कमर कसे कर लो, हूं पहुंचिए करिए गुरु दे। सारी संगत त्याय तुर पई है गुरु दे दर्शन, नाले तुरे जाते नाले शब्द की धारना पड़ गई, क्योंकि सिख जिस वे गुरु वाल तुरता निंदिया चुगली करता नहीं, शब्द की धारना शब्दार जी जो उतों ही आदमी शुरू हो जाती है गुरु के दर से लगनी, तो संगत तुरी जाती है पढ़ती जाती।

भगवान चाहिए तो मुझसे खा नहीं तू सदगुरु आप समझे जिनके चौदह रसड़े प्यारे कल तिना के पास तोड़ तिना की से मिले जी कौ नानक की बाबा पिताजी पहुंच गए जाके साहबा दी अस्तु जोड़ा ले लिया रो के क्या नीचा रूज करन वाले आ पत्ता नु पावन करन वाले आ तू ही नहीं पौती अभी अपने बाबे यार एडे सोने सुख तू भी छोड़ दी पाछा इतने बैठे हो जोड़े पे चाड़ रहे हो हजूर कहने लगे बाबा तो इन्हें नेत्रा नाल धन गुरु नानक के दर्शन की तीर तरह नीज ला के वेखे जोड़ा किसता है बाबे ने नीज ला के तकिया सचमुच जो जोड़ा मेरे धन गुरु नानक पास मेरी संगत हर प्रभु गुरु कितने रेंगे थोड़े नेत्रा चाहे हिरदे पे भी खा प्यारी साथ गुरु की बख्शिश द्वारा जो गुरु नानक ने पाख्या पर आप इतने सुन संगत वाल वेखो इस वे संगत ने तकिया उपा मार के रही जी पुल की जेदे को गुनाह पुछाने सन और जोड़िया जेदे को जी दान लेना सी उन्हें की बाबे ने कहा पातशाह करो कृपा से अजू उठे श्री हरिमंदर साहब जी के अंदर आके विराजमान होते हरिमंदर साहब जी का ध्यान रखे प्यारे संगत दी नजर नहीं तरप तरह क्यों जा रहे गुरु ने कोशिश की थी ते क्या प्यारी साध संगत रोवो न पातशाह एडा वड्डा पाप कर बैठे अजू कह लगे नहीं जब तुम इतनी खेचला की अभी कह लगे थोड़े प्यार के उत्ते प्यार की ज्योति प्यारे दे दीदा नक्श लाओ अदू कह लगे पहला पंक्ति पढ़ो जी रस्ते पड़ी दर्शन प्यासी फिर स्वरात चितवो वर्दी नींद संगत ने फिर घर के पड़े आ अगली पंक्ति पढ़न लगे अदू कह लगे ठहर अगली पंक्ति तय खोल कपट गुर मेले आ नानक हर संघ भी आओ फिर थोड़े पहला मन के किवाड़ तक खोलिए आपस मन के किवाड़ दरवाजे जे पूरा गुरु ही खोल सकता दर्शन दीजिए खोल किवाड़ ओ किवाड़ मालिक खोल जिसे रे बख्शिश कर इसे महापुरुष ने लिखे है मुर्शद ने जद बूहा लाया मुर्शद लो मुर्शद ने जद बूहा लाया अंदर जाती पाई हर पासे गुरु नानक बैठा निरंकार छबलाई चरना विच पदम है सोना जो दुनिया उठारे चल सूरज इथे पानी भर दे मानक मोती सारे ला दिता हुआ सज्जन ठाक का ला दिता सी भूमि डाकू का ला आओ प्यारे हो मेरे बच्चे थोड़ा भी मुआल है सारी संगत थके हुए हजूर ने अमे दृष्टि सारे और थकिया बख्शिश की थी देखिया जपो सतनाम नाम भी बख्शिश द्वारा ओ नाम रसना द्वारा हिरदे से जाके वसिया प्यारी सार संगत नाम का धक्का जिसे ने वजह भूआ फुर गया अंदर से बाहर नाम ही दिसन लग गया आखो तेरी अजून कह लगे हूं पढ़ो संगत ने फिर पढ़िया खोल कपट गुर मेले नानक हस्ती बख्शिश अजून कह लगे जो गुरु के प्यार सिख जुड़ता है गुरु उसके सहमत करता है बख्श गुरु ने वह बख्शिश संगत से की थी थोड़े उत्ते भी की थी है क्योंकि जो संगत को लैन वास्ते पंजवा गुरु नानक आप गया है तो भी गुरु नहीं लिया एक दिन नहीं केडे पाठा वाले हो प्यारे एक वीक पूरा माताओं भैणा बच्चिया गुरु बजुर्ग वीर अधी नागा नहीं पाए एक नागा भी कीर्तन नहीं पाया बाबा जी बचन करते सर जेड़ा गुरु ने दर्शन च नागा नहीं पाता गुरु मेरा जनाजा नहीं पाता यह तो सिद्धि है सारी संगत ने मत्था टेकिया पातशाह इन्हें रहमत हजूर कह लगे हाँ सात संगत यह प्यार गुरु कार्य ए बख्शिश है चल सर्व गुरु एक पैंदा जाए चल सदगुरु और पैंदा
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਲੈ ਦੱਸੋ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਛੇ ਕਲਾਸਾਂ, ਛੇ ਲੈਸਨ ਕਿਹੜੇ? ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਗੁਰਮਤਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਮਤ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੀਰਾਂ ਪਾ ਲਓ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾ ਲਓ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਮਤ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੌ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰ ਹਰ ਪਰਿਆ ਪਰਮਾਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਜਤੀ ਸਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾ। ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਪਰ ਦਰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਪਿਆ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹਟਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸਰ ਸਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਉਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਨੇ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਉਪਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸਤ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਉਸਤ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਸਭ ਔਗਣ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰੋ। ਸਵਾਜੇ ਮੱਕ ਗਏ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾਈ ਥੋੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਿਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਥੋੜਾ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਠ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਖਾ ਲਈ, ਜੇ ਅੱਗੇ 12 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁਣ 10 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਪੀੜਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਹੀ ਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ। ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਰੀਰ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਾਕਾ ਕਰ ਲੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁਣ ਅਲਪਹਾਰ, ਕਲਗੀ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਅਲਪਹਾਰ, ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀੜੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨੀਏ ਸੁਣੀਏ ਸਾਲੂਣੇ, ਹਰ ਤੁਰਸੀ ਮੁਖ ਬੋਲਣੇ ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀਏ, 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਓ ਇੱਕ ਜਗ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ।
बाबा और खाना कुछ ही खुआ जिस खाते सर पीड़िए मन में चले विकार तो खड़े न खाए ये मन विकारी मन बुरे पास के जाए और खाने झंड ये कितना थोड़ा समय है बाबा जी कहने लगे इतना थोड़ा समय जिस अमृत वेला तो नहीं क्योंकि अमृत वेला खास शक्ति छेवी पौड़ी केड़ी है ऐसा जी कहने लगे सतगुरु का उपदेश कमाए गुरु का उपदेश जो गुरु का हुक्म है उन्हें चौड़े स्वागत कौन है जो पति का हुक्म है लैट पुत्र कौन है जो माता पिता का हुक्म है सर सिख कौन है जो गुरु का हुक्म है जो गुरु का हुक्म अंग छकना बाणी पढ़ सत्संग में जुड़ना बुरे को मानो छड़ना चंगेगी अपन नहीं बनी ए गुरु का हुक्म है गुरु का सिख मन के सिखी की रोशनी चला जाता है फिर जिथे सिखी की रोशनी है उथे गुरु सतगुरु का उपदेश कमावे जिस वे छे पौड़ियां चढ़ जाता है छे क्लासा पढ़ जाता है तो भाई साहब जी कहते वो कौन बन जाता है फिर भाई साहब जी कहते वो गुरमुख बन जाता है भाई साहब जी कहते गुरमुख सोई जो सहज उन्होंने सहज अवस्था की प्राप्ति होती है तो आप अनुभव बार मिलियां संगत दूर नेड़े चल के आई संगत आप भी तन हो इतों के प्रबंधक भी तन होर भी कई दूजे गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक गुरुद्वारा रामगढ़िया साहब सेवकों ने पिछले टूर के उथे भी कीर्तन द्वारा हाजरिया पड़ी बड़ी संगत जुड़ती अब गुरमुख माई पाई एक आए उन्होंने दर्शन करके मेरा लू मूह पेट कर नहीं तो कई थावान से साढ़े अंदर कमजोरी आ जाती कि मैं फलाने गुरुद्वारे नहीं जाना फलाने गुरुद्वारे और सिख जिसे गुरु का नाम आ जाएगा गुरु तो एक ही है कोई ना चीजा मैं बड़ी खुशी हुई मान कुबेर करे वस्तु सामू सदा ला के गुरुद्वारे देश बना लो कोई हज नहीं गुरुद्वारे बनाने वाली चीज नहीं है पर गुरु का जो निशाना है वो साडा एक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पूजा गुरु की संगत गुरु नानक का नाम गुरु नानक की बाणी गुरु नानक का ध्यान चार सत्संग जिते चार चीजा हो गई बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते सर उथे गुरु नानक जरूर होवे अच कोई समा ज्यादा हो गया है पर ज्यादा होया जाया नहीं क्योंकि अच इस वीक का बनाया प्रोग्राम आखिरी कीर्तन से रात का तो कुछ समा चढ़ गया है अब सवेरे जिसने कीर्तन का भोग पाया तो गुरु प्यारे बैठे सामने कह लगे भाई साहब पिछली साल वाली साखी तुसी किधरे अफ्रीका नैरोबी कीती सी ते काफी रिकॉर्ड गई ते वो साखी सुनी है चित करता है फिर फिर सुना दे उन्हां दा हुकम सचे क्योंकि बाबा जी दे पिंड दे नेड़े ही रहण वाले सौंकियां दे रहण वाले उन्हां दा हुकम ते तुहाडा प्यार पिछली साल वाली साखी आप जी ने सौंपी समा कुछ ज्यादा हुआ है तो समा सफल है आई करी लगती जो सौ लाल भी आवे तो तुहाडे प्यार को वेख के सेवक का चित बड़ा पसंद है नहीं तो इतना चिर रहना बड़ा कठिन अरे गुरु की बख्शिश है यही रहमत है गुरु की जो साडा मन गुरु के नाल जुड़िया है तो आओ अरदास करिए अनंत वचन दे पातशाह साडे ते बख्शिश करो ये जड़िया मंजिला हैं गुरमुख वे गरीबी ये सारिया पौड़ियां असं पर इन्होंने चढ़ने की कोशिश करिए आस्ता आस्ता ये दाल ये मंदिर साढ़े भी मुक जाए तो साड़ी मन की यात्रा खत्म साधा जीवन हम अनंत साहब का

सावा नित खड़ी मुझो बन बाली राम राजी तार गुर हर मार जाली मेरे मन का नाम धार है खूने जाली जन्ना ने सदगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली सुख मैला सत श्री पतु चार बसे से देखो

सब्दंग ज्ञान सब्दंग वेद सब्दंग ब्राह्मणे खत्री सब्दंग सूर सब्दंग शूद्र सब्दंग प्राकृते सर्व सब्दंग एक सब्दंग जे को जाने देव नानक तंका दास है सोई निरंजन दे।

ठारा किवन किन ही निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया किन्हीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती किन्हीं कया मैं कुले वडाई किन्हीं कया बाह बो भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्हीं भवन

0: बात होए अच्छा होए सी।
1: मैंने अच्छे का भी जान आप वरता ऐसी
0: तन कर मक्की मन

चंगा कब हो गया पातशाह तेरी के तुझे बुरा हो गया पातशाह कम हो गया माता चंगा काम हो गया जी मैं किसा मैं पता कि जो तू बुरा हो गया जी जो रब ने कराया तो तू सियाणा है तो रब क्या जो गुरु कराम जो गुरु की बातचीत करा तनु नारायण पातशाह जी जो पवित्र पांच लगातार अच्छे मार्ग के मेरा नाम नितनेम नारा गुरु की गोद नितनेम ही प्रेम रात देर हो जाती फिर भी नितनेम ही अमृत वे आने वेखन वाला कहेगा केडा प्रेमी अब भी गुरुद्वारे प्रेम आ जाएंगे प्रेम की ओर से नितनेम को नितनेम जरूरी नितनेम का जरूर बन रोज अंदर को ले जाता है सिमर सत्संग नित्य आके हाजिरी पर यही प्रेम की पर अमूल्य है महान साधना तो सीखा समय कीर्तन

0: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: गौड़ी गंभीर प्रकृति का राग है। विलख दी आत्मा कृपा दी जाचना करती है, आपे दी खोज करती है। इसलिए इसे राग विच गुरु साहबान ने मन मत बुद्धि आत्मा मौत मुक्ति आदि गंभीर विषयां विच गुरबाणी उच्चारण की। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतांत दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे, पाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते धैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा रात दा प्रथम पहर। पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द दे बोल हन, गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन, थिर कर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे।

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा दा राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां दा प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग दा मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ट रामकली सद अनंत साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानिक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषभ अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगदे हन, बाकी स्वर शुद्ध हन। इस राग दे आरोह विच ऋषभ स्वर दा त्याग कीता जांदा है। इस दे गाउण दा समां दिन दा पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दां दा कीर्तन सरवण करोगे ओ हन, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार। ये गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है और इस राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। इस गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो, रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगा।